0: हरत महत दिवस रात दोए दाए दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदू करमी आपो अपने के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुटी ना जिने नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो समराओ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जिक हिज्जै कोट इंद्र इंद्रान सह सहन गणिज्जै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत प्रभु दाता दातार परयो जाचिकिक शरणा मिलय दान संतरेन जे लग भवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार मह सब कल उदरीक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुरपार ब्रह्म भगत वशल सुन हो तहां निराश हृदय पतत पावन सुन आसा उरतार अंतर जामी सुन कंपत हो अंतरगत दीन कह दयाल सुन पै परम टार जल धर संगम कै अफल सिंबल द्रुम चंदन सुगंध संबंध मलगार अपनी करनी कर नरक न पावो ठौर तुमरे बिरद कर आसरो समार अपनी करनी कर नरक न पावो ठौर तुमरे बिरद कर आसरो समार सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
ਫਤਿਹ ਸੰਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ

आख कहो को कैसे। त्रिपमन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वशल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले पग तारे। अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे। कहता पढ़ता सुनता एक, धीरज धर्म धरणी धर टेक। जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कौ जे मन पति आए। सचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द परम पौ भागै। सूरत मूरत याद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। सचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द परम पौ भागै। सूरत मूरत याद अनूप,

0: पौड़ी वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग बिरंग नेक ना जापन करतबा, जी अंदर जी ओ सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा वस तेरा घर पला, तेरे घर नंद बधाई तुद कर, मान मता तेज बनाया बुजर, सर्व कला भरपूर दिस जतकता, नानक दास नदास तुदया गै बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया।

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गए मसकत कार, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह।
1: बाबा देव का लगा है मेरे, वैसे घट है सारे, बाकी नहीं बाबा देव तीन चार साल हो गए।

बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहिब।

है, तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ते आवह सब ते आवह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ते आवह संतह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावह, आप हाथ दै मोह बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होय हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहाऊ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बप तरा, काल पाय शिव जू अवतरा। काल पाय कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रुन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा।
सिगरे सृष्ट दिखाए अचंपव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर

नित नित रख और धारू तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारू सलो।

गुर की टेक रहौ दिन रात, जा की कोय न मेटै दात। उर तोहार विचार मुरार रमो राम, मन मोहन नाम जपीने, अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी। गुर पूरै प्रगट कर दीने, राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सत संग पई, एव कंचन चंदन कीने। नाव शे अखाट बोलह मुख आगर, मेरा हर प्रभ एव ना पतीने। जन नानक हर हिरदय सद त्यावहो, यो हर प्रभ मेरा पीने। सतगुर सच्चा नाओ आख सुनाया, गुर मूरत सच थाओ ध्यान तराया। साध संगत असराओ सच सुहाया, दरगह सच न्याओ हुकम चलाया। गुरमुख सच गराओ शबद वसाया, मिटिया गर्भ गुआओ

अजर जराया तिस बलिहारै जाओ सो पाणा पाया। गुरमत सच हियाउ सो अजर जराया तिस बलिहारै जाओ

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम्मदी नूर अर सहुकुर स

अब मैं कौन उपाय करूं, जेह बेद मन को संसा चूके पौ निद पार पराऊं। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह बेद मन को संसा चूके पौ निद पार पराऊं। रहाओ जन्म पाए कछु भलो न कीन्हो,

पशानाओ ताब हौ पतित तराओ गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पास ज्यो उदर भरओ कहो नानक प्रभ बिरद पछानाओ ताब हौ पतित तराओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सर्ब कटाके दाते, सर्ब कटाके दाते स्वामी देह सुपहरन खान। सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान।

जप राम नाम कल्याण। सर्व कटा के दाते स्वामी देह सुपहरण खान। सुरत मत चतुराई सोभा रूप रंग तन मान। सर्व सुख आनंद ना

0: रंग प्रंगन एक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे बस तेरा कर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, माण महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जतकता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: Yeah.

साध संगत मिल मुआजी जा राज जोबन बिसरंत हर माया महा दुख एह महात कहे आस प्यास रमण हर कीर्तन एह पदार्थ भागवंत लहे शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत पूरन ठाकुर मेरा शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत

संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन्हें उपाया जग तिस जुगारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण।

कूड प्रजा कूर सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन गार कूड सोयना कूड रूपा कूड पहनन गार कूड काया कूड कपड़ कूड रूप अपार कूड मिया कूड बीबी कप गोए कार।

0: तुझ बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच दा पर जानिए जो हृदय सच्चा खोए, कूड़ के मल उतर तन करे खशा तुए। सच दा पर जानिए जा सच तरे प्यार, नाओ सुन मरहसी है ता पाए मुख द्वार। सच दा पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तरतकाया साध के विच दे करता बियो। सच दा पर जानिए जा सिख सचीले, दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच

अब क्यों उगवै दाल, जे कहोए ता उगवै रुति गुरत गोए, नानक पागै बहरा कोरे रंग न सोए, पै विच खुंब चढ़ाइए सरम पाहु।

अंधेरेत ज्ञान में गुणे पाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे बाजे बावे रूप करे सिगार, ऊंचे कूके वादा गावे जो दाका विचार। मूर्ख पंडित इकमत तुझ सने करे प्यार,

जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बड़ा मन न गए, ज्ञान का बड़ा मन न गए, गुर बिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़िया होवे गुनेगा, तायो में साधना मारिए जेहा कल कलना, ते बेगुनाह बचारिए ऐसी कला ना खेलिए।

सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रे ओ सर्ब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्ब गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान।

0: जग तारन को अवतार बनाया, जब यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जप यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
1: जाको मन ध्यान तारे, फिरत सकल जोग, कबहु को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे, जाको सेव मुन गह ना तो जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा झूठ भेख किए फिर तो उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गौर रामदास को।
2: जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन, जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जिय की तपत मिटावै, जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावै। सोई रामदास गुरु बलपन, मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर रग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरो नरो।
3: ब्रह्मा दिक शिव शंद मुनि सर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तन गगन आवत फुन तावत। सिद्ध मनुख देव अरदानव, इक तिल ताको मर्म न पावत। प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती, हर जन ताके दर्श समावत। तिसे त्याग आन को जच है, मुख दंत रसन सगल कस जावत। हरे मन मूड सिमर सुख दाता,

हर नाम हमारा वणज, हर नाम बापार, हर नाम की हमको सतगुर कार कुनी दी। हर नाम का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली कान गई। हर का नाम गुरमुख किन्ने बिरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। हर नाम का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली कान गई। हर का नाम गुरमुख किन्ने बिरले त्याया,

अड़पुस्तक संध्या बादंग सिलपूस बगल समादंग मुख चूड़ बेपूखण सारंग त्रैपाल ते खाल बिचारंग गल माला तिलकर लाटंग दो धोती बसर कपाटंग जय जानस ब्रह्मंग करमंग सब भोख निश्चों करमंग कहो नानक नेचो त्यावे कहो नानक ती बसर कपाटंग जय जानस ब्रह्मंग करमंग सब भोख निश्चों करमंग कहो नानक नेचो त्यावे

साहिब होए दयाल, कृपा करे तां साईकार करायसी। सो सेवक सेवा करी सुन हुकम नायसी, हुकम न होए प्रवान तां कसमें का महल पायसी। कसमें भावे सो करे मनो चिंदया, सो फल पायसी, तां अंदर गे पैंदा जायसी।

मानस काने करे निवास श्री भगवान तिन गल ताक तिन घर ब्राह्मण पूरे ना दो नभ्य हुई साध कूड़ी रास कूड़ावा पार कूड़ बोल करे आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हर छुरी जगत कसाई नील बस्तर पैर हुए प्रमाण मिले तान लै पूजे प्राण अपाखे अखा कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देके चौका कड़ी करे उपरे बैठी कुड़िया मत पेटा है बे मत पेटा है अन साडे पेटे तन बेटे बेड़ करेन मन जुठ है चुली परेन कहो नानक सच ते है।